0: दिनका कामो टाटल भयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेत जाए टुना खाए
1: बाबा लोई छाता खेलै जाओ खेतवा से लौटे बेर महा कर्रा घाम रठा
0: ए का बिसिनु कलर त छा त बिसाइ टुका हु लान त छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिन जीवन झलझल मिलाइ बिसारनु
1: त्यो बिस्ताजी ठोकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रोक्नु बाबा बेन सुई पानी भरि सक्खु पिहो न पस्ना नसे निकाल्छु सुक्खा हो जाटका
0: पटावा मही अब बिहानका काम दिनका आराम
1: हा त बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लू चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकि कपार छोपक निगी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जूर ढरक लाग मौसमी फलफूल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: अपने सुनती बाती रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज।